0: más. संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: অমৃতবাণী ভারতবর্ষের।

0: वर्धितः, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढा अभवत्, आयातित असंस्कृत पेट्रोलियम तैलस्य निर्भरता च न्यूनीकृता। सामाजिक माध्यम पटले भाजपा दलस्य सूचना प्रौद्योगिकी कोष प्रमुख अमित मालवीय अवदत् यत् E20 मिश्रण कार्यक्रम राजनैतिक बिंदु अंक निर्धारणेन चालिताया पक्षपात पूर्ण आलोचनाया अपेक्षया समग्र साक्ष्य आधारित मूल्यांकनाय योग्य अस्ति, तथा च एतादृश परिणामस्य सार्वजनिक नीतेः मापनीय परिणामैः न्याय करणीयः। 20% इथेनाल मिश्रणस्य उपलब्धिं भारतस्य अत्यन्तं परिणामी नीति सफलतासु अन्यतमं इति कथयन् सः अवदत् यत् एतेन उपक्रमेण कृषक कल्याणं, ग्रामीण विकासः, सहकारीय संस्थाः, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणस्य स्थायित्वं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु युगपत् औन्नत्यं दृष्टम्। एनटीए इति राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया समीक्षार्थं ओएमआर पत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य विषये छात्राणां अभिभावकानां च कृते सचेतक पत्रं प्रकाशितम्। एनटीए इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं प्रदत्तानि बहूनि ओएमआर पत्राणि कृत्रिमाणि प्राप्तानि। एनटीए इत्यनेन उक्तं यत् प्राप्तस्य प्रत्येकस्य पत्रस्य सक्रियरूपेण परीक्षणं क्रियते, परन्तु यदि कृत्रिमं अथवा एआई जनितानि ओएमआर पत्राणि प्रस्तूयन्ते तर्हि गभीराः न्यायिक परिणामाः भवितुम् अर्हन्ति इति सचेतना दत्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऐषमः दशमकक्षायाः द्वितीय बोर्ड परीक्षायाः परिणामः घोषितः। ये छात्राः द्वितीय बोर्ड परीक्षां लिखितवन्तः ते डिजी लॉकर रिजल्ट इत्यस्य माध्यमेन तेषां परिणामान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अनुशंसानाम् अनुरूपं सीबीएसई संस्थया दशमकक्षायाः कृते अस्मात् वर्षात् बोर्ड परीक्षाद्वयं प्रवर्तितमासीत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः एस्टोनिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समये टेलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे, निवेशे, नवीनतायां, प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः, उद्योगनेतारः, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगतास्सन्ति। जम्मूकश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरं एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभरात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के

रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मायामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी

0: या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार दसवीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक

0: नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन, बसरमौर में येलो अलर्ट जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पद्मश्री पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल

0: फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रमयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received.

0: सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है।

0: जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और

0: सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉ. मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिलचर।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: এখন শুনবেন নাটক একটি টেলিফোনের অপেক্ষায়ের শেষ অংশ।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है आपके मनचाहे गीतों का। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का इस प्रोग्राम में। जब विविध भारती है आपके संग, तो सुरीले गीतों की बहार तो लाजमी है श्रोताओ, और ऐसे में हूँ आपके पसंदीदा गीत तो क्या कहने। तो देखिए आज के मनचाहे गीत प्रोग्राम को गौर से सुनिएगा, कहीं आपकी पसंद का कोई गीत तो शामिल नहीं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

जी ने किरा फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज से। इस गीत की फरमाइश की सिमगा से छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले की ये फरमाइश थी। और इसी गीत को सुनना चाह जारूर वारूर महाराष्ट्र से बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे, कार्तिक युवराज। और इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार ने।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से, केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मन चाहेगी।

आंधी का दुगाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलासागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी माहिती, चंद्रया मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने। और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा, दीपक गौतम, बिट्टू बिट्टी, अरिहंत, सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहां बैठ जाइए ना।
2: बैठकर क्या कर?

0: मेरा भाई यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
0: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
0: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
0: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब?
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
0: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
2: मैं लाचार हूँ पिताजी।
0: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
2: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार हूँ।
1: आप कुछ सुन रहे हैं क्या?
0: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
0: हाँ, सब ठीक ही है।
3: क्या कह रहे हैं आप?
0: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहाँ, जहाँ धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहाँ राजेश की माँ मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
3: लेकिन आप क्या कह रहे हैं
2: पिताजी?
0: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
1: आप आराम से बैठिए ना।
0: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
1: इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
0: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: क्यों
1: नहीं पूछना चाहिए क्या?
0: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
1: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
0: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
1: क्या कह रहे हैं आप?
0: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला जा रहा।

0: क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्यों कि बुलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा लिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी

0: कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
1: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
0: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
1: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
0: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
1: नरेश करम तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
0: और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके?
1: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित के यहाँ जाएगा?
0: फिर कहाँ गए होंगे?
1: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
0: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
1: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहते?
0: गलती तो जरूर हुई है माँ।
1: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
0: ऐसा न कहो माँ।
1: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
0: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
1: कैसे विश्वास करूं मैं, जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा?
0: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
1: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
0: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
1: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
0: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
1: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई। मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी थिरती रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
0: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
1: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी।
0: ये क्या कहती हो माँ?
1: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
0: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
1: तुम्हें बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ?
0: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
1: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
0: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
1: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी आई हूँ माँ।
1: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
1: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था?
1: भूख होगी तो खा लूंगी।
0: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
1: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
0: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहूँ माँ?
1: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
1: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ,

0: कहते हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
1: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
0: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
2: ये सब क्या कह रही हो तुम? बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
0: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूं।
1: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
0: क्या करूं माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ। अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूं माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूं माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
1: ये सब क्या कहती है बेटी? ये सब मत कहा, मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
0: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ, तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: मैं अभी जा कहा रही हूं? तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूं, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद से मैं बहुत बेचैन हूं, बहुत दुखी हूं।
2: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगाकर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोजकर घर ले आना है।
1: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
3: ये एकाएक क्या हो गया भैया?
2: तुम सब कुछ जानते हो नरेश,
3: मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सम रह गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, तभी आपका तार मिला।
2: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
3: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
2: हाँ, मिल गया।
3: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या कहकर गए थे, कैसे गए यहाँ से?
2: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
3: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
2: दूसरा क्या?
3: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
2: तुम सब समझते हो नरेश।
3: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
2: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
3: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
2: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
3: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
2: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
3: गए तो थे।
2: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
3: हुई थी।
2: तुमने क्या कहा था?
3: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
2: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
3: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
2: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
3: उन्होंने क्या कहा?
2: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
3: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
2: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हजार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती

0: कृष्णा की शादी भी हो जाती और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ।
0: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
1: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था।
0: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
1: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपए क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपए नहीं थे क्या?
0: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
1: जानता हूँ मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
0: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
1: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
0: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
1: समस्या? क्या समस्या है?
0: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?

0: करता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
1: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
0: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
1: समस्या? क्या समस्या है?
0: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
0: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
1: समस्या तो कठिन है ही।
0: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रही हूँ। ईश्वर करे वे वापस आ जाए, कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
1: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
0: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
1: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूँ।
0: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
0: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो हम ही लोगों को निभाना है।
1: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
0: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
1: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
2: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
0: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
2: कितने दिन तो हो गए।
0: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं ले सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
2: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
0: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
2: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है, अब क्या होगा?
0: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
2: क्या सोच रहे हो तुम?
0: अब मैं क्या सोचूं माँ?
2: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
0: ऐसा ना कहो माँ।
2: अब मैं क्या करूंगी बेटे, अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
0: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
2: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती, मरती भी तो शांति से मरती।
0: यह सब मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
2: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
0: होगी क्यों नहीं माँ, कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
2: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
0: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
2: इतना आसान है बेटे?
0: है कि नहीं?
2: इतने रुपए लगेंगे।
0: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
2: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
0: मैंने नरेश से बातें की है।
2: क्या कहता है वो?
0: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
2: और उससे कुछ ना हो सका तब?
0: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
2: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
0: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
2: कौन करेगा इतना खर्च?
0: क्यों, मैं करूँगा।
2: सचमुच?
0: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
2: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
0: हाँ, सोच ही लिया है।
2: और बहू से पूछा है तुमने?
0: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
2: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
0: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
2: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
0: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
2: सोचना क्या है?
0: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
2: कैसी इच्छा?
0: कृष्णा की शादी की।

0: हाँ, शादी तो करनी ही है।
1: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
0: उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे।
1: हाँ, रुपए तो लगेंगे ही।
0: आएंगे कहाँ से?
1: उपाय करना पड़ेगा।
0: क्या उपाय करेंगे आप?
1: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
0: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
1: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
0: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
1: तो दूसरा कौन करेगा?
0: नरेश,
1: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
0: सवाल तो उठाना ही पड़ता है। जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
1: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
0: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
1: और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब?
0: तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
1: और क्या सोचना पड़ेगा?
0: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
1: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी। वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे, हम उनकी इच्छा नहीं पूरी कर सके तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
0: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें। अपनी तीन बच्चियाँ हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया, भैया, भैया, क्या हो गया भैया?
1: क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
1: क्या हुआ क्या नरेश?
2: चक्का दिखे थे भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया, पंखे से छोड़ गई है।
3: क्या किया बेटी तूने, क्या किया तूने, क्या किया?
1: मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश, कृष्णा ने लिखा है।
4: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ, लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ, अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है, मेरे कारण पिताजी घर से चले गए, मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो, मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती, मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई? लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ, अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: ऑफिस से तो पिछली बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे

0: खुद ही नहीं मालूम मैं कहां जा रहा हूं। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भाई मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहां अंत होगा।
1: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
0: ये अखबार आज का है?
1: हाँ आज ही का है। लीजिए देखिए।
0: ये पत्र राजेश ने छपाया है क्या?
1: राजेश कौन?
0: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहां भी हो लौट आइए, हमें माफ कर दीजिए। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है, कृष्णा नहीं रही, माम मरना सुनने है।
0: माम मरना सुनने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
1: क्या बात है भाई साहब?
0: मैं कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता, कृष्णा नहीं रही। क्या मतलब है इसका? कहां नहीं रही दुनिया में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
1: ये आपके घर की चिट्ठी है। लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
0: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
1: आपकी पत्नी बीमार है।
0: आप मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई, कैसे मरी? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूँ तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? हाँ? क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसकी हत्या की है।
3: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार, निर्देशन किया M.S. बेक ने। आकाशवाणी के रांची केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: ये है विविध भारती, उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का

0: दारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सही जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं
1: क्योंकि
2: कैसे
1: पुराना
2: लग रहा
1: नाता है।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था
1: जी।
2: और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और
2: जी,
1: एक नमी
2: जी,
1: थी।
2: हाँ,
1: काफी पुराने दिन आपको
2: जी,
1: याद आ
2: जी,
1: गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। अब रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे।
2: हाँ,
1: लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल। मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी। एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना, मुझे सुनाओगी? तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ। और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई? मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से, नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने कहा क्या क्या कह रही हो, तुमने रचाई? बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैं नहीं रचाई। कहते और कोई कहानी? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ, रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ, तब तक खेलने नहीं जाना, 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा था कि सजा थी?
2: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे। हाँ, मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा, मतलब बच्चों के लिए खिशमिश कहो,
1: सुंदर नाम।
2: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसे माँ नहीं मिली।
1: जी जी।
2: हाँ, मेरी माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है, लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक सीवी में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे राज्यसभा की सदस्य रही, परिवार नियोजन, महिला शिक्षा को लेकर जो काम उन्होंने किया है। फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
2: करेक्ट,
1: ये भी जो इन दोनों की जो छत्र छाया है, दो महान हस्तियां,
2: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको
2: इसमें कोई शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें, कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे, कोई वो कहानियां सुनाने का जमाना था। मेरे बचपन में मैंने तो बहुत कहानियां सुनी, तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का, बाल वंग में लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो

0: एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे, और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या
1: जी
0: कहना
1: बिल्कुल,
0: चाहती। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी। उसने भी कैम्ब्रिज में, जब लड़कियां मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुंच जाती थी, उस जमाने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया, लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके
1: बिल्कुल
0: वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहां फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह। फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी।
1: और
0: और
1: पुणे आ गई।
0: हाँ, पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना अप्पा हम कहते थे। और तब से मैं उनकी छत्र छाया में पली बड़ी,
1: बिल्कुल, रघुनाथ
0: पुरुषोत्तम परांजपे पे।
1: परांजपे जी, एक बहुत बड़ी हस्ती, एक राजदूत, एक शिक्षाविद,
0: या
1: फर्ग्यूसन
0: या
1: कॉलेज के
0: जी
1: प्रिंसिपल, फिर
0: जी
1: पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर,
0: जी जी लखनऊ
1: तो
0: यूनिवर्सिटी के भी, और
1: जी
0: इसलिए लखनऊ में मेरी पैदाइश लखनऊ की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ हाँ
1: तो वो जो आपके बोलने की नज़ाकत है वो लखनऊ से आती है।
0: ओ दिया चलो, ये मैं बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझती हूँ, बहुत ही
1: जी,
0: बड़ा।
1: नाना जी के बारे में और माता जी के बारे में और भी बातें बताइए। वो तो अभिनेत्री भी थी।
0: अभिनेत्री मत कहो, क्योंकि उन्होंने शौक के तौर पे एक बार वी शांताराम की फिल्म में एक रोल किया, दुनिया न माने, या मराठी में कुंकू।
1: जी
0: हाँ, उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता आप्टे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ। लेकिन हम उम्र, मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी माँ को कि ये क्या, तू कहते इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने, दोबारा उस तरफ नहीं गई।
1: जी
0: लेकिन यूनुस, एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा, पांघर लेली कातड़ी, मतलब तहना हुआ खाल। हाँ, तो उसमें एक किरदार है कोळिंड, हाँ,
1: मछुआरी।
0: मछुआरी का, हाँ, तुलसा नाम की। हाँ, बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माँ ने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए। रोज रोज, मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोळीवाड़ा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बसता है वो। और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी। और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोळी टाइप का साड़ी पहनती,
1: जी
0: गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण, कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनकी, वगैरह वगैरह। और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई। और
1: वाह,
0: मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी, उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ। और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो, और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची, तो हमने स्टैनिस्लावस्की पढ़ा। और स्टैनिस्लावस्की का कहना है, आप तो जानते होंगे, कि रोल तुम खुद जियो,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: सही
0: है कि
1: सही
0: रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हटके, बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी।
1: हाँ, कमाल की बात है। हाँ, बड़ी शरारती थी।
0: नहीं, शरारती नहीं थी इतनी, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती, लेकिन मेरी माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो, कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं।

0: माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम्हें सही की तरह पिटाई करने का। हाँ,
1: अरे
0: और
1: बाप रे,
0: मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड, कि जब मैं छोटी थी ना तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना।
1: वाह वाह,
0: हाँ,
1: बड़ा प्यारा
0: तो
1: था ये।
0: हाँ बहुत स्वीट। तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ। तो माँ नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही, मैंने जिद की और बहुत ही हट गई। मैंने कहा नहीं, मैं शादी तो ये होके ही रहेगी। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मुहूर्त देखते हैं। और बाकायदा मुहूर्त देखा, और
1: वाह
0: फिर तुलसी बाग करके पुणे में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे। मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए इधर उधर से।
1: गजब।
0: और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह।
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई।
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुणे में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब, ये तो
0: हाँ
1: इतनी भव्यता के साथ
0: हाँ
1: शादी की गई।
0: जी, और
1: मुझे ना,
0: मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई
1: हाँ ये भी एक
0: हाँ
1: विडंबना की बात है।
0: लेकिन
1: ये वाला
0: हाँ
1: जिक्र आगे की तरफ
0: ओके
1: करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहां पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहां एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों
1: एक
0: नहीं।
1: फिल्म में जो बात आती है, गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ
1: मुझे
0: हाँ
1: लगता है उसी जज्बात को वो
0: वाह
1: आगे
0: वाह
1: बढ़ा रहा
0: क्या
1: है,
0: बात,
1: तो वो गाना
0: सुनाइए
1: सुनते हुए
0: सुनाइए
1: आगे बढ़ाते
0: जी।
1: हैं बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों को पढ़ रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन,
0: हाँ
1: स्कॉट, और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी, और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत, और दुनिया भर के साने गुरुजी, और इतनी सारी किताबें, हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी, और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकाना कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहां फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहां जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली, और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा उसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहां बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं, और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या क्या क्या नहीं होता। तो वो सब, मैं इतना, मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
0: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि
1: हाँ
0: आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे
1: हाँ
0: लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पड़ रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो ये तमाम चीजें हैं,
1: हाँ
0: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, और वो है अच्युत रानाडे साहब।
1: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
0: जी
1: बहुत ही उम्दा हस्ती थे, हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इब्सन का डॉल्स हाउस, आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया, और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ैनी देने आहे वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे,
0: जी
1: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
0: जीवन
1: तो
0: शैली का।
1: जीवन शैली का, बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्ग्यूसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्ग्यूसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहां एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुंचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियां सुनाते, लेकिन कहानियां ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियां,
0: हाँ, ये बड़ा मजेदार
1: हाँ।
0: है।
1: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या द गुड अर्थ, या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियां मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी।

0: जैसे शेजारी, बानूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियां उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है। मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे कहानी, और वो जैसे कहानी सुलझती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ, फिल्म टेक्निक सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
1: हाँ,
0: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मजे की बात आपको बता दूं, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई। राम जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे, गाने वाले, तो उनको पीने की आदत थी और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह वो दूसरी जो हौसा वाडकर की भूमिका थी वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है। तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए सफेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुराही की नोक अटकती है। सुराई की नोक ही कहते हैं ना, तो सुराई की नोक अटकती है और वो सुराई साथ साथ उनके वो जा रही है और ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा इसका मतलब कि उनकी शराब छूटी नहीं है ना? तो उसने कहा, बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूं, थोड़ा घमंडीपन लगेगा लेकिन सच बात कहूं तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज्यादा बेहतर था। ये दरअसल पर्दे पर जो आया है इतना मजा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ।
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है।
1: गजब गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा है, वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार
0: जी, देखो वो साथ साथ होता रहा है,
1: कह के सुनाते हैं। हाँ। दूसरी तरफ नाटक चल रहा है।
0: हाँ।
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा बनाती है। लेकिन दो बातें जो है वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही है पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये कहा जा सकता है, क्योंकि माँ भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है
1: जी।
0: हाँ, अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई जबरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नजदीक आया था। हाँ? और आखिरी महीने जैसा होता है, मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया। सही परांच पे कौन? मैंने कहा, जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था। अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे जिंदगी का है कि ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन? मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे। कहते हैं मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ, देख तो लो क्या है, जा। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकंजम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहां पहुंची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले

0: मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहां। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट्स, ढगांच्या गडगडाटा सह विजांचा कडकडाट होईल।
1: हाँ,
0: अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊं, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे
1: जी,
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माने कहा ये तो बहुत जरूरी। और श्लोक आज भी मुझे 100-1 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म, पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान से गड़गड़ाट और विजान से कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना, तो वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंके कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे
1: भारी होते हैं,
0: वो ही करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं, माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओहो, तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह, ओहो मायूस हुए सब लोग तो नहीं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है? मैंने कहा नहीं, अब क्या है? कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा, तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाजा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी।
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपए, और
1: वाह।
0: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतनी मजे की बात, इतना मजे का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है, और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपए। बहुत खुश हुई, और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ बनाया। और ये नहीं कि मैं बेवकूफ बनी थी।
1: कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पूना एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा, अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई,
0: 3 गुना। फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी, तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मजा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ, तो 1-2 दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पियर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी, फिर दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉय दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई, और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे, जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमिनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था, और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था, तो मैंने फोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुल करके घर का फोन दे सकती है?
1: वाह वाह वाह।
0: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो, तो

0: ने कहा ताई ताई बोल रही है? टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से, मैं चौंक के मैंने कहा वाह वाह वाह मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ, रेडियो की ताई बालोद्यान जी ताई बोलते ना? मैं सर हाँ हाँ जी हाँ मैं बोल रही हूँ। अरे ताई, एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो बेचारी इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही, और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माई टेस्ट ऑफ रिकग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से। वाह,
0: और ये पहला अनुभव था, और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं। जो आनंद वो पहले उसमें था ना
1: जी,
0: ताई ताई बोलते हैं यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन
0: नहीं,
1: जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी,
0: हाँ,
1: गदी माडगुलकर,
0: हाँ,
1: उन्होंने एक फिल्म लिखी थी,
0: हाँ,
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: दो
0: कौन सा?
1: आंखें 12 हाथ उन्होंने
0: अरे
1: लिखी थी,
0: ओके,
1: जो ओपन जेल कंसेप्ट पर जो
0: कमाल
1: फिल्म
0: है,
1: थी,
0: इत्तेफाक की बात।
1: वो तो गदीमा ने ही लिखी थी, है ना।
0: सुनिए
1: तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहां जगह
0: वेरी
1: बनाते
0: गुड,
1: हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम,
0: क्या बात।

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और
1: जी
0: नाटक करने शुरू किए,
1: जी
0: ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे,
1: हाँ
0: 7-8 नाटक थे शायद,
1: 10-12
0: बाप रे
1: हाँ।
0: जी।
1: तो

0: ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक का नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहां बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मणती बोर एक पहा किती तरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है।
1: जी
0: फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ तो मैं कोकिला आ आ कर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है लिखता है, और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ एनीवे anyway, तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: हाँ उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इंपॉर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्टकार्ड आया, फैन मेल, किसका, पुल देश पांडे।
1: अरे वाह
0: हाँ
1: वाह वाह, क्या बात
0: कि
1: है।
0: सही तुझी श्रुति का ऐख ली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली, और बहुत मजे की लगी, क्या बात, शाबाश आशीष ली तरह ऐसे ही लिखते रहो। तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये। और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बालोद्यान के लिए नाटक लिखे, शेपटी चाचा, पत्ते नगरी। पत्ते नगरी पहले था पक्षांत से कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से। हाँ तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है तीन नंबर की बस होती थी, तो बस पकड़ के मैं जाती थी। और ये एक मजे की बात, तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूं हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है।
1: वाह
0: हाँ और तब मैं बस में बैठी, और पता नहीं ये पत्ते नगरी का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान चार जो है ना, अंग्रेजी नाम
1: जी
0: बताती हूँ,
1: जी जी
0: हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल हैं, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के जमाने से उनकी लड़ाइयां शुरू है और जिनका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयां चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था। और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे। वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट, इन अ ताश के उसमें। तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा फला आदम का, ये वो। और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे, एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहां देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुंच गई। फिर ये किताब भी छपी, और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरी के खेल होते हैं इधर उधर, भारत में, भारत के बाहर भी, और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरी का। और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली का गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे, उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड्स मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड्स मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट. तो मैं लिखती गई, माउस प्रकाशन ने छापी ये किताबें और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में. और परमिशन लेने के लिए

0: तो बहुत पूछते हैं लोग और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते
1: कर भी
0: रहते
1: लेते
0: हैं,
1: हैं लोग।
0: कर भी लेते हैं।
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहां ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा सचमुच।
1: वो एक लड़की
0: हाँ, वो
1: दिखी
0: नीचे
1: और
0: दिखती है
1: वो
0: नेहा।
1: पत्ते
0: हाँ
1: से फैसला करते हैं कि
0: अच्छा
1: जिसके
0: अच्छा
1: पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो
0: अच्छा ओ
1: जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी। हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं और वो दो बुष्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर और
1: बिल्कुल
0: उनकी
1: बारी बारी
0: बहुत।
1: से वो फारूक
0: हाँ
1: शेख रह जाते हैं।
0: हाँ
1: चश्मे बुजुर्ग का जिक्र चूंकि ताश की बात चली तो मैंने
0: हाँ
1: ताश से ताश
0: हाँ
1: जोड़ दिया और मुझे लगा यहां चश्मे बुजुर्ग का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस
0: कौन
1: दौर की
0: कौन
1: कहानी
0: सा
1: चल
0: गाना
1: रही है,
0: सुनाओगे?
1: आपकी पसंद।
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार
1: बिल्कुल
0: खड़ी।
1: सुनते,
0: हाँ
1: काली घोड़ी द्वार
0: हाँ
1: खड़ी, वाह सुनते।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है। ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था, जो आपको मालूम ही है, अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा, और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता था, हाँ, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता, एक शो होता था रेडियो वीक का, हाँ, एक शो हुआ पर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे, अब अगला शो कब है? तो मैं, अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया, हाँ हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे, इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में, हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे, और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगलेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
0: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है।
1: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना, इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
0: जी।
1: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
0: जी, तो वो
1: हाँ
0: अखबार में विज्ञापन देखा
1: हाँ
0: आपने।
1: तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो
0: अच्छा, ऐसे ही कह
1: सकता है।
0: दिया।
1: तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से, और फिर 1-2 महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कैसे थे? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। सिर्फ 1 महीने में शादी आपको पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते 1 महीने में वो इतना तंग आ चुके आपसे, वगैरह वगैरह बातें होगी। एनीवे, तो आई ज्वाइंड एनएसडी एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर, क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर और यहाँ पहुंच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा एनएसडी में, एंड वो था इब्राहिम अलकाजी।
0: क्या बात है।
1: तो वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब 7 जिंदगी में पूरा पड़ेगा, इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, यूज अ फैंटेस्टिक टीचर, बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊं मैं। इट वॉज रियली वंडरफुल।
0: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम इब्राहिम अलकाजी था। उन्होंने

0: मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था।
1: नहीं नहीं नहीं, आषाढ़ का एक दिन,
0: आषाढ़ का एक दिन का मंचन किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए। आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला और कोई दिलचस्प याद?
1: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया,
0: पत्नी जो होती,
1: हाँ, कालिदास की पत्नी, रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मजा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलका जी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वजन नहीं घटाया तो तुम्हें

0: আকাশবাণী শিলচর, শুরু হলো আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান একযোগে প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 362.32 মিটার অর্থাৎ 828 কিলোহার্জে এবং FM 102.3 মেগাহার্জে। এখন শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राज्यसभा में सभा नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी बैठक में उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: इससे पहले बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि NCPI मान्यता प्राप्त संसदीय दल नहीं है। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी दल सदस्य बैठक में शामिल हुए। मानसून सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देते

0: हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिवानी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज उनसे मुलाकात की। जांजीबार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गोवा ने आज पौंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को बीटेक, एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी दिए गए। कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और यह राज्य के तटीय क्षेत्र में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुधार कर और पर्यटन तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर ओडिशा के तटीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को आज उनकी जयंती पर सादर नमन किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान उनका दृढ़ संकल्प और असाधारण कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 20वें ओवर में बिना विकेट खोए 124 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी शिलचर।
2: কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভক্তি ও ভরপুর বিনোদনে দেশবাসীর একান্ত আপন আকাশবাণী।
3: গ্রাম থেকে শহরে, পাহাড়ে কন্দরে আপনার বার্তাটুকু অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার সবচাইতে সহজ, সুলভ ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম আকাশবাণী শিলচর। যে কোনো বিজ্ঞাপনের জন্য আজই যোগাযোগ করুন। আপনার লক্ষ্য পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ আকাশবাণী শিলচর।
1: শুরু হচ্ছে মণিপুরী অনুষ্ঠান।

सुरु सुरु रिजाटाय थायनि खनालेखा हाप्लों फनिबेशन हाप्लों बारो देबोनि लुगुथरावनि खुरांहा आकाश पानि सिलचर दोखना नंग सानसिनि ग्रावजमा आकाश पानि सिलचर ग्रावजमा पडिदु अमित बर्मन भारत सिगां थावहा प्राइभेट रकेट विक्रम 1 नि टेस्ट क्लाइजेन पोका रकेट रिबानि यहनहा रिजाबरि गेजेर बसावहा थांहि डाउडिंग पोका मिशन आगमन नि बिसिं आंध्र प्रदेश नि श्री हरिकोटा नि सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर नि सिं साइन नि घंटा जिग नि बाजि हे मिनिट बुआ बुब्लिहा रकेट विक्रम 1 के हाइपोका इले ब्लाइपुबा नि भारत प्राइवेट रकेट हाइपुयाबा थाकतांबा देश हिसाब जों मिटि जावका मंत्रिस्क नरेंद्र मोदी इले ब्लाइबा नि स्काई रूट एरोस्पेस के हमजौमा कसौमा खनारिबा मुंग श्री मोदी फोन नि दाराजों स्काई रूट बोजों के हमजौमा कसौमा खनारिबा एबके गारिबो मंत्रिस्काव मोदी विक्रम 1 नि लुगु दंफायाबा बजम टुरावजों गरन लाइमानिबो जमाबा केन्द्रनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बिदेबनि मंत्री जितेन्द्र सिंह अदे बजमखेबो हमजौमा कासौमा खनारिबा एबो हाबा माइपाहि डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन ग्राउडे डिआरडिअनि दांगजाम चेयारपार्सन जि सतीश रेड्डी इले हाइपुबाके जारमिन सेटिहि साइन्टिबा एबो बजमहा आसामनि गोबां मियाम सेन्जु टुरावबो रिसार्च अदे दांने खाजामा माइदावनांथिहि राजिनि मन्त्री हजा हिमन्त विश्व शर्मा बाखान खानारिबा दामरागायाबा रजाबिया जुबिन गार्ग दामरागाबा माइपाहि जास्टिस शर्मिला बुया फास्ट ट्रेक कोर्टहा साकी आजावमानि खुसिहाबा जेनका आर्टिस्टनि नसुर हारि अमित बरुवा क्राइम ब्रान्च बेदेबनि गिनि अफिसार अभिजित हाजारिका अदे रजत दे एबो केस माइपाहि मिया आदालता साकी रिहिबा एजांगेदे जेलहा दङियाबा सिद्धार्थ शर्मानि लयार के सिंग्रि किशोदु टिपाजारि पुलिसनि स्पेसियल इन्भेस्टिगेसन टीम ग्राउडे एसआईटि जुबिनगार दामरागाबा माइपाहि आर्टिस्टनि काहिलिपारानि नहा खन्द बस्तु बेरेनके सुगुहि लांखा गदाइन राज्य सभानि एमपि सुस्मिता देव मियाहा सिलचारहा सफाइका कुमिरराम एयारपोर्टहा बिजेपिनि दाङियासाराव बके लामजावहि गामसा अदे किमजां लामजावहिबा एयारपोर्टनि सिं आखाइहि ग्रावजुमारि आसाराव जां ग्रावथाय थाइसिलिबो बुब्लिहा थिबा सावसि राज्य सभानि बुबाइन देश गिबिम हासे थिहि अदेबानि वेस्ट बेंगल

0: এতক্ষণ শুনলেন লঘু শাস্ত্রীয় কণ্ঠসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে ঠুমরি সিয়ারাম তিওয়ারির কণ্ঠে আকাশবাণী শিলচর। এবারই শুনবেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত প্রথমে সমাচার সন্ধ্যা, তারপর News@9, তারপর স্পটলাইট এবং সব শেষে শুনবেন সংসদে আলোচ্য বিষয়সমূহ নিয়ে চর্চা।
1: আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে সর ফিরোজি। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमरीका ने जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेन्द्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
3: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
1: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का

0: विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
1: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन टू बी गिविंग चांस एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परम्पराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान

0: सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए असर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ता

0: उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेस्सी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेस्सी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार हैं। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित हैं। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमरीका ने जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।